चब लंगाए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार बसाए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो।

अजामल दा पिता सोचदा है अजामल वड्डा होवे पढ़ लिख जावे ते मेरी जगह राजे दे दरबार विच ए भी कथा करया करे अते जिन्ना इज्जत मान मेरा है इस तू वद इज्जत मान इस नू मिले। अजामल कुछ वड्डा होया अजामल दा पिता अजामल नू पढ़न वास्ते पाठशाला विच लै गया। पहले दिन अजामल पाठशाला पहुंचिया। अजामल नू पढ़ाण वाला गुरु अजकल दे अध्यापक कहंदे ने मास्टर कहंदे ने प्रोफेसर कहंदे ने पर पहला लोग विद्या देण वाले नू गुरु कहा करदे सन ते पूरा मान इज्जत देंदे सन। अजामल दे गुरु ने कहा अजामल जदू मेरे कोल पढ़न वास्ते आवे ता एक गल याद रखी शहर दे बाहरों आना है बाजार विचों लंघ के तू मेरे कोल पढ़न वास्ते नहीं आना। अजामल ने कहा सतवचन। अजामल जदू पढ़न वास्ते जांदा है ता शहर दे बाहरों आंदा है पढ़ाई करके वापस घर जान लगदा है ते तां वी शहर दे बाहरों। अजामल जदू तक गुरु दा कहना मनदा रहा सारिया विद्यार्थियों नालों सियाणा हुशियार पढ़ाई विच तेज शरीर भी चंगा गुरु भी खुश पिता भी खुश अजामल भी खुश पर ए खुशी बहुत ही दिन ना चली। एक दिन अजामल मन विच सोचदा है ए मना सारी दुनिया शहर विच वसदी पर मेनू गुरु ने क्यों रोके है कि अजामल शहर दे विचों लंघ के बाजार विचों लंघ

जो गुरु कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा है किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा है। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने करों तैयारी की थी, करों तुर पिया। अजामल शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा। कलावती नाम दे एक वेसवा हार श्रृंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देखिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंचे है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचों निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोज दा काम बन गया वेसवावां दे बाजार विचों आना, वेसवावां दे बाजार विचों जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया। शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है

अमल बीमार हो गया, मंजीते पे है। एदा नारायण पुत्र कोल खेड रहे, छोटा पुत्र होने करके प्यारा लगता है। हर वक्त पुत्र नारायण करता रहता है, ते होन भी पुत्र नारायण करके उस नूं बुला रहे है। अंत समा आया, अंत समा हर इंसान का, हर चीज का अंत है। अज अमल का भी अंत वेला आ गया। जमदूत लैण वास्ते आ पहुंचे, जदू जमदूता नूं अज अमल ने देखिया

जमदूत वेख पुत नारायण बोले शया। जमदूता नू देख के डर गया, पुत्र भुल गया, ते उची सारी कहंदा नारायण बचा। ते नारायण परमेश्वर दा नाम है, सच्चे मनो नारायण के है। जदों नारायण के है ते जिहड़े जमदूत सन ओ पिछे हट गए, क्योंकि हुक्म है जमदूता नू कि जिथे परमेश्वर दा नाम है उथे जमदूत नहीं जा सकते। जमदूत पिछा हट गए। होया कि जमगण मारे हरजना, गया सुरग जमडंड ना सहया। जमगणा नू देवत्या ने हरी दे जना ने पिछा कर दिता।

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुरु उपदेश अते उदेश नूं उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी जाओ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करने वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करने वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बणीआं। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आउंदा है कि जदों किसे सियाणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आउंदी है कोठी कंबदी है ते लरजा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ए फिक्र रखिए के गुरु महाराज जी आप किहो जिहा जीवन जी के सानू सदियां तक साडे सामने काया पलट के आए जुगत ओहियो रखी जोत ओहियो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए अवतार धारिया औतरे ते उन्हां ने सदियां साडे सामने जी के दसिया। ग्रस्ती सन कोई तारकुल दुनिया नहीं सन रिश्तेदारां वाले सन साडे वांगो कारोबार वाले सन साडे वांगो पर इनू दुनिया विच रह के पानी विच रह के किवें निर्लेप रहे ने। पानी तो मुराद है माया बहुरंगी माया अनेकां रूपां वाली माया जिन्हें वड्या वड्या नूं छलिया पर किवें इस नूं छलिया गुरु साहिबान जी ने ते उहदे प्यारे महापुरशां भगतां संत जनां भगौतियां ने। ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ

माघ मज्जन संग साधु थोड़ी कर स्नान हर का नाम त्याय सुन सब नानो कर दान वही दान कर सकता है जो आप नाम जपदा है। नाम सुनदा है ते फिर सुनाउंदा है। जेड़ा सुनेगा वो सुना सकता है, जेड़ा आप नहीं सुनदा वो किसे नू नहीं सुना सकता। सुन दियां पौड़ियां पहला हन ते मनन दियां पौड़ियां मगर आउंदियां। कई प्रेमी जिजे मनना नहीं ते फिर सुन दी की लोड़ है। जे नाम जपना नहीं ते गुरुद्वारे किस वास्ते जाना है। नहीं बड़ी लोड़ है गुरुद्वारे संगत विच जान दी ते नाम सुन सुनदा रहेगा कोई दिन आ जावेगा ते मनन वाली पौड़ी भी चढ़ जावेगी। पर जे सुनदा ही नहीं ते मरना की नहीं भी हर का नाम ते आए सुन खरीदा नाम ते आते सुन जेड़ा सुनेगा वही त्यावेगा ते गाहानू दान भी करेगा। दान माया दा भी है, दान लीड़े कपड़े दा भी है, प्रसाद शिकागे ए भी दान है, सोना चांदी भी दान है। पर ए सारेनू दान नहीं कर सकता, ए सारेनू दान नहीं मिल सकता, क्योंकि गुजारा ही मसा हुंदा है। कोई विरला होएगा थोड़ा बहुता दानी दान कर देवेगा, पर सारेनू दान करन वाला कौन है? गुरु, गुरु दा नाम है। फिर जेड़ा भी नाम जपदा है ए पंडारे ओदे पास हन, फिर ओ 84 लाख जून नू दान कर सकदा है। ए दान सब नू मिल सकदा है। ए नाम दा दान जिन्ना नू मिलिया है, जिन्ना ने नाम जपया है, फिर ओना दी तूड़ी दी ही बड़ियाई कीती। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ। ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਬਈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਪਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ।
माया कोई माड़ी नहीं, माड़ा साडा वर्ता है। माया नू बुरा नहीं कहा, बुरा साडा वर्ता है जो सी माया पाके माणी ते हंकारी हो जाते। वो भी बंदे हन जेड़े माया पाके चुकदे हन, वो भी गुरमुखन गुरु नानक दे घर विच वे जेड़े ए समझदे ने कि ए सब दाता गुरु नानक दियां हन, उन्हां दी माया सफली है। माया दो प्रकार दी, दो चलावे रा, एक रब नू मेल दी ते दूजी नरक लै जा। आ जो हुण माया तुसी ला रहे हो ना, महापुरशां दी जाल विच ए रब नू मिलण वाली माया है। ए जो भी साधन कर रहे हो आ माया करके टिकटां भेजियां हन ना, ए माया ने अपना मलाप करा दिता है। मलाप दा की सबूत है? स्वरूप है आपां नू गुरु नानक दे घर दी संगत मिली, ए है माया चंगी। पर जे बुरे पासे लग जावे ते

बुरके चढ़ने ऊपर मेरे माथे माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे बड़े पाग देवे परमेश्वर बड़े पाग देवे परमेश्वर कोट पला।

पट अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब

दूसरे गुरु बने गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ये देवी दे पुजारी सन। हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी के दर्शन करन जाया करदे सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियों के नाल देवी के दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा किया। भाई लैणा अपने साथियों नूं कहन लगे, मैनू पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने। बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी। भाई मेरा दिल करदा है मैं दर्शन करे आवां, देखा कि गुरु नानक कैसा है। साथियों नाल सलाह करके घोड़े ते सवार होए ने। भाई लैणा अपने डेरे तो चल पए उस जगह वाल जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे जा रहे ने ओ डेरा ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक बैठा है। अजकल आप गुरुद्वारे कहने हैं, पहला धर्मशाला क्या करदे सन, जिथे बैठ के परमेश्वर की सिफत की जाए। एक परमेश्वर तो सिवा होर कोई गल ना होवे, जिथे सेवा ते सिमरन होवे, जिथे दर्दमंदा लोड़वंदा की सेवा की जाए, जिथे दुखियां का दुख दूर किया जाए, जिथे धर्म की गल होवे, ओ धर्मशाला ओ गुरु दा परमेश्वर दा घर। भाई लैणा घोड़े ते सवार ने, पुछते जा रहे ने कि धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे हैं काफी दूर चले गए। हुण अगों किसे कोल पुछना है, कोई नजर ना आया तां भाई लैणा हैरान हो गए। एक बड़ी ही सोहनी सूरत जिदे चेहरे तो नूर टपकदा है, जिन्हां दे बोल फरकदे ने, सूरत देखे हैं मन नूं ठंड पैंदी। ओ सूरत पता नहीं किधरों चलदी होई भाई लैणे दे सामने आ गई। और जद भाई लैणा उस सूरत नूं देखदे ने, अखां चमकण नूं दिल नहीं करदा, अखां कहिंदियां ने कि मैं सूरत देखदा रहां। ए सूरत अखां तों ओले ना होवे, इन अखां दे नाल बड़ा कुछ देखिया पर एहो जी सूरत अज तक देखी नहीं। ते भाई लैणा उस सूरत नूं पुछदे ने, ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा है। मैं गुरु नानक दे दर्शन करने ने। सात संगत ए सूरत होर कोई नहीं, ए आप ही गुरु नानक है जेड़ा इस सिख नूं आप लैण वास्ते आए। गुरु नानक साहब
ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਆਵੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਅਗਾਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ

सब कुछ भूल गए सेवा करन लग पे। जो गुरु ने कहा कदी कहा मोड़िया नहीं। धन गुरु नानक साहब जी दो साहबजादे सन, बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी चंद। दोनों साहबजादे जिन्हां नूं इस गल का माण सी असी गुरु नानक दे सपुत्र हां, साढ़े पिता तों बाद यह गुरगद्दी सानूं मिलेगी, पर गुरु नानक दे कार निम्रता सेवा सिमरन अते हुक्म मनन नूं पहल दित्ती। समा बीतदा रहा, गुरगद्दी देण दा समा आया, तां गुरु नानक साहब ने अपने पुत्रां दी होर भी सिखां दी भाई लहणा जी की प्रीख्या ले। एक दिन की गल है, संगतां बड़ियां आईयां करतारपुर दर्शन करन वास्ते। गुरु नानक साहब दे नाल गुरु नानक साहब दे दोनों सपुत्र भाई लहणा अते संगतां नाल इक दरखत है जंड दा। गुरु नानक साहब कहन लगे, श्री चंद इस जंड दे दरखत ते चढ़, टाणियां नूं हिला, टाणियां हिलाएगा मठियाई डिगेगी बर्फी डिगेगी ते संगतां नूं ए मठियाई खुआवां। श्री चंद कहन लगे, पिता जी बावले हो गए, कहो जिया गल्ला कर दे, कदी दरख्तां नाल भी मठियाई लगी? लोकी सानू पागल कहणगे, ए ते जंड दा दरख्त है जिन्हू कोई फल भी नहीं लगता, इनू मठियाई लगे? गुरु नानक साहब ने अपने छोटे सपुत्र जिन्हां दा नाम लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास नूं कहा, बेटा हुण तुसीं दरख्त ते चढ़ो, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ तां कि मठियाई डिगे। तां उन्हां भी इही गल कही, पिता जी वड्डा भरा ठीक कहिंदा है, कदी दरख्त दे नाल मठियाई लगी? ये अनहोनिया गल्लां ये किस तरह हो सकदियां? सानू लोग पागल कहणगे। जद उन्हां पुत्रां ने जवाब दिता, हुण गुरु नानक साहब ने भाई लहणे वल देखिया ते मुस्कुरांदिया कहण लगे, लहणा जी तुसी दरख्त ते चढ़ो, टाणियां हिलाओ, दरखत हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। सत बचन कह के भाई लहणा जी दरखत ते चढ़न लगे ने, साहबजादिया ने हाथ फड़ लिया। कहन लगे, भाई लहणा ये की करन लगे? लोकी पागल कहणगे, कदी दरखत नाल मठियाई लगी है? दरखत ते ना चढ़ो, ए नहीं हो सकता कि दरख्त तू मठियाई दिखे। सत्संग भाई लहणा हाथ जोड़ के कहन लगे, साहबजादे बाबा जी मैनू गुरु का हुक्म होया, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ, मठियाई दिखेगी। मेरा काम है हुक्म मनना, मठियाई डिगे पावे ना डिगे एद नाल मैनू कोई मतलब नहीं। क्यों? हुक्म मने होवे परवान ता खसमे का मैल पाई सकता।

कोई समागम ना होवे मैं किस तरह जा सकती अपने गृहस्त जीवन विच। जे आपा सुखी वसना है तो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या, वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनता है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तां जीवन दा आनंद कुछ होर हुंदा। अमरदास कहण लगे, बेटा तेरे सस सहुरे मैं पुछ लैना, तेरे पति कोलों इजाजत भी मैं लै लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब के चरणा ते सिर रख के मैं उन्हां नूं मना लवांगा कि बीबी अमरो नूं मैं लैके आया, क्योंकि मैं गुरु वाला बनना। इस तरह अमरदास, जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अमरदास कहने हैं, अपने पिंड तों खडूर साहब चल पए। जद खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे होए ने, दूरों तक लिया कि साडा कुड़म अमरदास आ रहे हैं, क्योंकि भरा दा भरा भी कुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे कुड़म दा भरा कोई भी कुड़म ही लगा कुड़म आया। जब सिंघासन दिता बैठन वास्ते, ता अमरदास ने हाथ जोड़ के चरणा ते मत्था टेकिया, ते चरणा दे कोल ही बैठ गए। कहन लगे, पातशाह मैं कुड़म बन के नहीं आया, सेवक बन के आया। अपने चरणा विच देओ जगह, सिख बनाओ, अपना सेवक बना लो। उमर अमरदास दी ओ है जिन्हों आपा कहने बुढ़ेपा। उस उमर विच आके सेवा की, लंगर च भांडे मांजे, लंगर पकाया, झाड़ू फेरिया, और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के प्यासा दरिया से जांदे ने, पानी दी गागर भर के फिर वापस आके पैदल गुरु अंगद साहब नूं रोज इशनान करा।

सेवा परवान होने का समा आया। रोज की तरह आज भी अमरदास जी पानी की गागर सिर से चुकी हुई प्यासा दरिया पहुंचे। मन की भावना कैसी? पहला पानी की गागर दरिया विच भर दे, उस गागर नु सिर से चुक के फिर आप इशनान करते हैं, ते फिर वापस खडूर साहब आते। एक कुछ मीलों का सफर रोज पैदल तय करते। अज जद पानी की गागर लैके वापस मुड़े, दो तीन बजे का वेला रोज की तरह आ रहे ने। पैर नु ठोकर लगी, अमरदास जी थले डिग पे। अपनिया सट्टां दी परवाह ना कीती पर पानी दी गागर ना डिगण दिती, क्योंकि गुरु नु इशनान कराना। कोल जुलाया दा घर सी, डिगण दा खड़ाक होया। जुलाया घरवाली नु कहण लगा, खड़ाक होया कौन हो सकता है? अद्धी रात का वेला है, इस तरह लगता जिवें कोई डिग है। जुलाई की घरवाली जुलाई कहन लगी, कौन हो सकता इस वेले? इको ही तो है अमरू नी थावां जड़ा रोज रात नू इथों पानी लैके लंघदा है। बुढ़ा पर रात नू भी चैन नहीं, कोई टिकाणा हुंदा ते टिक के बहिंदा, इह निथावां है इहदा कोई थां नहीं। जुलाई ने जदू इह गल कही, इह अमरू निथावां है, ते अमरदास जी हस पए। हसदिया होया सहसबा बचन कीता, चली ना होवे पागल ना होवे, इनू की पता कि मैं थां वाला, मैं निथावा नहीं। मेरा थां ता गुरु नानक है, मेरा थां गुरु अंगद है, मैं तो गुरु वाला वा, मैं निथावा कितने? ये बचन कहते हैं। पानी की गागर लैके गुरु दरबार आ पहुंचे, अपने गुरु नु इशनान कराया। पर अज कुछ नजारा हो रही हो गया, उधर जुलाई चली हो गई, जिसने कहा से अमरू निथावा है। क्योंकि महापुरुषों के बचन सह सभा होते ने और वो बदलते ने। अज वो गुरु अंगद साहब जिन्हां दी सेवा अमरदास जी करया करते सन, उन हैरान कर दिता दुनिया नू। जद अपने सेवक अमरदास नू कहा, अमरदास तुसा बड़ी सेवा कीती, तुहाडी सेवा प्रवान हो गई, हुण जिस सिंघासन ते गुरु अंगद साहब बैठा करदे सन उत्थे अपने सेवक अमरदास नू बिठा दिता। पांच पैसे नारियल अगे रखिया, परिक्रमा कीती। गुरु अंगद साहब ने अपने सेवक अमरदास की परिक्रमा करके फिर गुरु ने आप अपने सेवक नु मत्था टेक दिता, ते कहा अमरदास हुण तू सेवक नहीं, हुण तू गुरु नानक का रूप हो गए, हुण तू गुरु है ते मैं तेरा सेवक। इन्ने नु ओ जुलाया भी अपनी घरवाली नू लेके आ गया, महाराज ये भुल गई, इनू बख्श दियो। तां गुरु अंगद साहब कहन लगे, भाई गुरु नानक दा दर बख्शंद है, तेरी घरवाली ने कहा सी अमरू नी थावां है, पर हुण देखो ये थां वाला है। इहो ही थां वाला नहीं, हुण जिहड़े निथावे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਗਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ

अमृत छतर गुररा में दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगद्दी